0: 刚好来这边没事是的。你要给我吧，你光明给我吧，没给的一点可以给你给你，买的空仓给你的，看到不给你，老婆不嫁不给，你嘛当这个开发商的当这个嘛。
1: 对，大米是 expert 的。
2: 不哩，啊，可以，现在时间还是没时间，按着去看那里把按这个嘛开的的，再去分布，啊，没说分布的嘛，他带来不分布的可以呢，现在时间你还能老不哩？啊，对个，啊，可以。सरकार नसु मतम मतम की कोई की सीनियर सिटीजन सिंह की याईफन अपा थबक थोरांग सिंह जलों के लिए से खुदा मुना हर द ओल्ड एज पेंशन स्कीम ऐसे इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम आ रही है मसी सु सही हुंपु अमसु हुंपु की मतलब के लिए बसिंग की दा कोई की मतिंग पीपा अदु कुंबा के नो मनी थोरांग मनी अदु का मसी खाना रिपा आयन सिंह की मखा द सु कोई की ओल्ड सॉरी सीनियर सिटीजन ओर के दी कोई की अना लयंग संसद पर मतम दा magi tongan ba kiu oma senior citizen gi kiu oma thamu aduga senior citizen singna tuina ahlwer pagi adu kaujen thi bagi ama tawu gi chumba se ahlwer ba singda na ba laiung singgi yengsen ba tongan ba khoi gi dedicated ken oma a khoi gi yengna na bagi pambai ama su a khoi gi sarkar gi lede hospital singda thamgada bani haiba wafum jing chu yawi aduna samna haiba da a khoi gi matam matam gi सरकार नसु खुगी
1: चने से दिजे
2: सिलेसिन चनगी
1: कानानबा
2: लोकली अदगे मु कोई ओल्ड एज होम से खुगी सरकार ना मसी सरकार ना स्पेसिफिकली रन तो व नत्रगजु ननाई संस्थान सिना तौरिब ओल्ड एज होम सिंदा सरकार नसु मधु मतिन पी सेल गी मतिन पी कैदोनाबा हाइरिबा सीनियर सिटीजन सिंचे अहलोर बसिंगबो अखुगी कना लेत्रबा माबु मसा मसु सिंग इंजन बगी खुदोंग चाबा लेत्रबा सिंगदु निंथि जने लेनिना बगी लंबी सेम बसु सरकार ना मतेंग पांगे
1: होय ए मरक त कोलम तल खच हेलो हेलो
3: हेलो गुड मॉर्निंग सर
1: गुड मॉर्निंग मिंगले पंगोंग त तक पियु
3: सर पोल पोजरी बा आया कैर तगी थोंगाम न बदी पगे सर
1: अ नबति करी हंगबी गदब ना हंगबी expert again
3: sir jason ki len sim biri ba sa de gi ai na khanje ning de re sir
1: ah we
3: sir di kan gumba matam da wa khan chuoi ra ba sahi miyai sankhala ba sindagi na sahi ma thu ba bi manung da lai ba ahal ta kho ni kari gumba da baza tar pa hai ba tare wa khan chuoi ra ba de gi
1: hoy
3: mati masa mashul lai na lai na फाजिन पुंजन बा नमदबदि मोंगमा याखै न करिबो कांदो गुजे बसा
1: होय
3: मसि सादारोल निसम प्रजा एखैना हाइरि बा अनजी मसा मसूल लैलैना फाजिन पुंजन बा नमदबा आसि करम बा मरि लैना बा लोकोटा सलादा एखैना कंप्लेन तबे याबगे आन जिंजिगे पुंचीदु मसा मसूना कंदीबे याबगे हाइबजी याखैना सादारोल लैना करम बा department da sagaga wakat pe yabage hai bagi mata angi da akoi lenchin biri ba sadigu apam khara khanje ding da loina na sar ani bu amuka na komlo na khuram jari
1: ta
2: pani a ayosik le ba ain se su hai sai ki tribunal da wakat pasi mi masaduna wakat pa natraga su athagi atopa miwe amana natraga lanai sangsan amana wakat pa yai hai dana adegi mu masaigi tribunal masaduna su su moto masamoto na case lokha pe yai na thumjagre aduga masamasu singi daita se ahlwara ba singbu ningsi jine jengjen ba makhoi bu maintenance to ba hepsi yawi aduna sahi sorry masaigi wakhal suwara ba mi ama ahlama madubu ningthi jana jengjen na thambai ba se masamasu singi mathongni aduna ekhoina to se concern citizen amana khoi dai khoi gi थोदोक्तुबु उरीबा लेकाइगे मियम ओइना एखैना मसे हाइबो हमसे मसाइगि ट्राइबुनेन दा खै रिपोर्ट ओबो जाय अदुगा ट्राइबुनेना मखैगि सु मोटोकि समलखो प लखपनि खंगदि अमनि खंगदि मखैना इनसेलगा मदुगि चपचाबा थबामा अदुम लखपयै हाइनाय थमजगे
1: अदुगा मयगि वखन चोरबो सिंगदि तोंगानो डिटेल हेल्थ कि एगम सु लैदु ओरामनि
2: अदेगि मु कदुगे दा मसाइगि वखल चोरबगि मतान सिसु अखैगि तुंगान बा खोगि सिगि आइन सिना तबा मेंटल हेल्थ कि तुंगान बा आइन अम लै मसिगि आइन सिगि मखादा मखोइबु खसागि
1: अंगापि
2: सेमिना बा तुंगान बा प्रोविजन सिंग लै अदुना मखोइ बिजुबु खोगि मेंटेन हेल्थ कि हॉस्पिटल दा थमदना मदु नॉर्मलाइज तो नबकि

0: लंबी
1: है, मैं
0: शूट
1: रखता
0: मशीन
1: कॉल,
0: खड़ी
1: मतलब
0: है।
1: चेक। हेलो हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग जी, कहीं हम भी कहते हो ना, हम भीरो एक्सपर्ट है कि
2: पढ़ने पढ़ने आई रंजीत मनो तो मैं तक इच्छा
1: हाँ खोन दे दुख खंजर है रंजीत माल है तो नहीं रंजीत है तो हाजिर है अपनी हम भीरो एक्सपर्ट है कि
2: अच्छा
1: हाँ
2: जी मामन जाम जाम करे
1: हाँ
2: आई ना थंजनी में सी मेंशन दिए वो सार देगी थंजनी सी आई कोई की अरे वो अपो को मापा सी माँ के अपो की सी नहीं दिया बा अपो को जंग नहीं बा अगर तो माँ की पहले मकान दे आई कोई की मतों में पोता उनके कारी को मकान दे माँ की सबक सी फिरम ना मकान में यार तब तक की लाभ में पांच सात का पावा नहीं ऐसा ही संस्कृति वांग मजबूत चलो अब मजबूत चलो अगर तो आई ना थंजनी में कि मजबूत ai khoi gi a han chi to e so na ta ba ma ni yum na a phai tiak te ka ka ni ni ma chi kham cho sa tha gi ti ra ga tham ma ga tha ni na ma chi tham bi ba sin li gi ai na na ga ma ka ni wi na ga ni ko sa na kan ni ni ni ya ga a du ga ma du ya ga pra ma ga ga sa gi ma pa ma sa ni ha gen to ga se ba to ga du ga di khe nai ma chi ba chi a ko gi ta ni kan ni ya pra अब मशीन मत ले रखा भी एक खुला है इसलिए अब वो एक रखा था मधु मतान खंजन नहीं मरम नहीं मापा से कहीं तुम्बा बीपी स्टॉक तो रो हम लोग रे हमें कहीं तुम्बा तुषार लो हम उसके फोक तो रो मगर ना साइड पर एक होम ना थम देना मायूम ना ऐसे जी माय बहन तेरी माय हम भी नहीं मतान द मशीन भी तने पायों मम्मी ना या बा मशीन मत खंजन नहीं थागे पड़े
1: तभी से एक्सपर्ट है
3: पानी आ हजिक थम्बी सी ngasaigi masa aduna
1: thalam
3: thamna sakhrabani na magi ahlorba pereng tu akhoi yengchen laba mi ne ega tawsi ai na yabra haina habibani matang sai na thamjani ngasi akhoi gi se se bp stroke tawdu leire bp stroke tawle be mi do seba tawbudu ngasaigi train tawraba nurse amana seba tawuni hena su mapung phaduri bani akhoi imung manung na tawbudagi di aduna masi ai nda kaisu akai belite ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯍꯟꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯀꯣꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ꯫ ꯍꯜꯂꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ꯫
3: ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ, ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯝꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ
1: ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯄꯥꯏꯗꯦꯕ
3: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯒꯥꯡ ꯆꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯂꯤꯌꯥꯇꯤꯞ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯪꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯃꯊꯧꯔꯣꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯐꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯅꯦꯕ
3: ꯃꯥꯅꯤ
1: ꯑꯩ ꯀꯣꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯜꯂꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯟꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯍꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯊꯤꯌꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯒꯤꯐꯇꯤ ꯆꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯒꯤꯐꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯟꯊꯨꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ
3: ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯟ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ
1: ꯃꯄꯨꯗ
3: ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯍꯧꯕ ꯁꯨꯃꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯗꯤꯠ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕ
3: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ

मखल मथेल की थरों के संदोकन ताजरी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल लगी हौजी पुफम पोदन लाचरी तोान तोान फिल्म सिंगदेगी लोखत्रब इसई खुदोल के अहमद लौबीरसी लम्हें भी था फिल्म सदानंद बेबी सुचित्रा की अपुन खोजल सैरेंब सैरब बी डी आ शर्मा

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग, ꯇꯥꯔꯥꯝ
1: मैडम।
0: ꯅꯣꯡ ꯆꯔꯤ
1: ꯁꯦꯟꯁꯨ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯥ
0: ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯆꯥꯟꯅꯉꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯅꯥꯎꯕꯅꯤ
0: ꯏꯅꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯀꯣ
1: ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩꯕ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯁꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯇꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯀꯔꯒ ꯂꯥꯏꯁꯝꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯏꯔꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯖꯒꯦ
0: ꯕꯪꯀ ꯁꯔꯃꯒꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबीरसे सखंग वाक्सक सखंग वासक थोरम थोरम असे इमा लैसेम इनात लोशंग सेलोई लंगमाई चिंग इम्फाल इसके तेंबांग लोइनना संदुक चोबनी।

आकाशवाणी इम्फाल हाउसिक मतमिशय निखग मथंग मथंग ताबिरसी अहानबद ताबिरसी बी कुंज बिहारी शर्मन सकबा निरंजनो शमन सेरिंगबा मतमिशय मा

0: हेलो हेलो,
1: गुड आफ्टरनून बेटा,
0: गुड आफ्टरनून कनाउ बिरो बनो हाय बियो
1: हरा हुई
0: मिंगले
1: मैडम
0: समता
1: ये
0: बियो
1: सिखाई मैं रखा है जगी सकल साथ ही ने फोन सुपांग है फंग दे नाम मजे नंबर वाम इसे इज़ गंगे ने तो उसे गंगो फंग दे वो फोन से फंग दे जना
0: फोन फंग मीटा पर क्या हम कोई रखे
1: फोन से थानी सुलम तो माले इसे खान बाकी दे
0: कोई की गुड इवनिंग मणिपुर गुड मॉर्निंग मणिपुर दगदी लाइव फोन इन प्रोग्राम तो बिदा इसाई खन बगी थौरम दगदी सरो क्या बिरप ब्रो
1: क्या है पम दा
0: कोई की गुड इवनिंग मणिपुर गुड मॉर्निंग मणिपुर थौरम दा सरो क्या बिरप ब्रान हंग जाबा
1: मैदान ही खन जे मैं याम छिन दरे ता दरे
0: होय सना तो इंगसी की अदोम करंबा मणिपुरी फिल्म शेताबी गदा बनो हाई बियु
1: साजम छाया पम दाम जो कोई पुष्पारानी जी सही हम तंग खंज के चपालन दे इंफान फिलोंगी पुष्पारानी ने सब कोई सही दो दो का मतियम सुतुम गंगे
0: गंग बीरा मो
1: ओलंग थागी ले वांग ले गु वान खांग ले नंग सी मैं तंग ओम सब मेरे थमो नंग मेरी ओले नंग ओलंग थागी ले वांग ले गु
0: ada cari sana tu isai su yamna phajana nungshi ba khonje la magalu ina na surta na phajana ngang thupi rami ko adu di adum gi shekhu dol tamjari japan landa imphal film ase dagi pusparani na sakpa chandam shamacharan na sairing ba ibum cha shamacharan na sairang ba isai se tabis

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज, लाइफ एंड प्रोग्राम द तराम नक्चरी ताबिरे ताजर है बियो
1: एक कंपन द गी बगे बतीने मैम
0: तक भी उंगे से दिकारम ब मणिपुर फिल्म से ताबी के दबनो
1: ओ मिराग मछी दी आवाज म पुगी बोन न सक

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैम गुड आफ्टरनून मैम
0: गुड आफ्टरनून लेडीज लाइफ एंड प्रोग्राम का
1: दिया मैं टुडे
0: रंजिता हाय रंजिता तक भी उंगसी करंबा मणिपुरी फिल्म शेटा भी गदा बनो
1: मैम लाइज फिल्म की दिव्या हम न सपा कुटेक तो ना तो दो ताजा गेम
0: दिव्या हम न सपा औजित बाबू ने तोजन में सेटिंग बा ना नौ सको मांग सेटिंग बा नायरप्प मतम दो हाय विशेषनी को रंजिता रेडियो सेट का यामना नकना ना लेबी बमा माले ना है कितन लाख तो पिरा कदी हम नोंगाय जगनी
1: ओ थापे ने अमना तो लर बने दुग थोले
0: होय होय गायरक पम तम दो हाइना सही होबे सही से ओइरनी को
1: आ आ
0: इसे इसे मते कितन अंग तो पिरम गद्रा कमाई तो बनो
1: मेम इजी है प्रेम में मते ताजा रे में
0: होय होय
1: पसंद नंग जगे ना मे की ट्राई तो मे थंगवा
0: होय होय अदुति अदुम गिशे सिखोदो तम जरक तके को
1: आ मेम तो
0: थरुम सरो क्या भी या पिरक पकी दमकता दो मुथा गचरे लाइजर फिल्म से दगे देविया हवम न सकबा ओजित बाबुनिंग थौजम न सेरिंग बा ननाव सगो मांगना सैरांग बे सेसी कुदो तम जरी तामिन से

धन्यवाद चंदना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ गाने नए पुराने। तो सुनते हैं ये पहला गीत, हीरोपंती फिल्म से है और इसको गाया है मोहित चौहान ने। शब्द रचना कौशल मुनीर के हैं और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

दूसरा गाना पेश है आपकी कसम फिल्म से। आवाज दिया है किशोर कुमार ने, शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और सुरों से पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

तीसरा गाना पेश है प्रिया सरेया और दिव्या कुमार के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है ABCD2। शब्द रचना प्रिया सरेया के है और संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी फाल केंद्र के एफएम संगाई चैनल से कार्यक्रम गाने नए पुराने, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है राहुल देव वर्मन ने।

पांचवा गाना है कुछ ना कहो फिल्म से, आवाज़ दिया है साधना सरगम और शान ने, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लोय।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घर की सुइया हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम भूले बिसरे प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। तो मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

थौरम संडक्टना तहनजरीबासी आकाशवाणी फलके एफएम संगाई चनोलगिनी हाउसिक लांधुकचरी अरीब फिल्म अमदी मदमिसेसिंग आहान बदा ताबिरसी

बचाइए। नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैराम घूरुगे, नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैराम घूरुगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याइ न बुताव हंगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याइ न बुताव हंगे।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी फल हाउसिंग ताबिरसी रेडियो क्लास चमड़ी निफुतरुक शुभ दंगकता क्लास 8 के लिए इंग्लिश लेसन 4 A courage in the struggle for human rights. Thaudomasi, Department of Education S. Samagra Siksha Manipurgi, Ting Bangaluinana, Sandok Chopithauramni.

थौरम सन्नौतुना ताहनजरिबासी आकाशवाणी फल्के एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजिक तोंगान तोंगान बसैसकपसिं दिगि मतमशिगी खुदोल ताबिरसी खुदोल गि अहानबदा ताबिरसी रूपरागगी सैसकपसिं नसकपा बीजेंद्र कुमार शर्मन सेरिंगबा मतमशैमा

तराई तराई खनु सिंजु बोरा थाने सी पाखुंग मग चंगे अंगांग मले रम्मी मख्या जाम न लावी बीजरी मखई चागी हाई चारी मखई कपी

तुंगान तुंगान बस ऐसा पुसिंग दिगे मतम शेकी खुदोल ताबिरे आकाशवाणी इंफाल हाउसिक मुख संदुक्चरी याई फुयुंबाल की थोड़म दा नूपी सिंह द थिंग नबा सरू की अनाब सिंह हाई बहिरम बस की मतांग दा जेनिम्स के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट दा एसोसिएट प्रोफेसर उन्हें ले बिरी बा डॉक्टर लाइश्रम लवंगोगा उन्हें दुनो वारी साबा उन्हें बिरी बी सेराम लिंथोई थोड़म बुतोक बा थोकचोम रेनुबला

0: ana boma tam jida injury se yam na sima yam kamane ten tu yam na sana zo angang active yam oi ma tam haital mathang da 20 to 30 years higher sidam la se masila ko dana nga sai gi hari ba mayam sigi mathak ta man hapsal tu se koi gi ten dino peti sana koi gi nga sai gi in attendant haibdo tendan jina sarbu da nap jaga se marane kamai to ni patient la ge khuning ne man tendu je khuning jida na re elbow dani ko je khuning jaisa na re si ma pas si ma pang da re si da re aje ma na re yar ro dini ko are di last si ge khudang jaisa na ne khudang si na re si ai keno kor pangam dre pep chubangam dre why devangam dre are keno je khut po thada re si tor dini ko are gi di keno da khu da si khuning da mane khuning da si am na gale are si si de mo wi si am na common when ba si si ne bim sa si matam di mo su wa re ko mo oi ba mo na ha ko na pa gi to mo na ha gi le na na as yam na common le re are gi next up say 30 to 40 year rakta di ha na ji gi matak ta ni ko ha bak tu se khauri na ba ho ra ne ba khwang na ba ya ho re ko le ji khauri si na ba ho ra ne ba khauri si na re as tum ba gol ko na ngak se le ya dre ngak se le ya da so ndo ro ငုံလာကင်းရဲ့ဒီဝိုင်းနေတယ်ရဲ့ဒီဝိုင်းနေတယ်အမိုင်းတော်ကမိုင်းနဲ့လေးလေးလာကနေလေးစိုင်းကြီးရင်ငံတဲ့ဒီငေါ့ချစ်မိုင်းနဲ့ပိုက်ပတ်တဲ့လေးထုတ်မိုင်းငေါ့ချစ်ထက်ကလေးကရင်ငမွေတယ်နေပါတယ်ငေါ့ဆုံးတဲ့လေးရဲ့ရင်ငမွေအဲ့ဒါမှအစမုန်းတဲ့အမအဝပါနေတုံးဘောက်လောက်ပတ်တဲ့မရောနေရောင်းသွားတယ်ရောင်းဘန်ငံတဲ့မုန်းဝါနဲ့ခေါင်းငံတဲ့မုန်းကြတဲ့အတူမမြမ်းလာက ayatare tumjalak ba khara khara tum ba horak ba adugi penje khara khara hore adudegi adudana te koi gi khwang de su khara khara ma jai na ba hore disk ki degenerative changes hai na
1: oi jehi phu bo manu
0: mi te ah khara khara hore sai 30 dai de degenerative changes khara hore adu degenerative changes koi sahi am bo gi khara khara wear and tear hai tare gari chaka thorga gari jaga tum ko do khara khara tum thona re tum aidana कार के जगह स्कूटर जगह का तो तुम को और तुम को तो ना पेन फॉलो पाए बॉडी शेप तक के देख कर सेंस ऑफ कर ना पेन फॉलो पा अरे अतुब मना हम नंबर होइब सिगी सही से कंप्लेंट तो रेसे खुद तो ना बा मा को ये हैंड डिसऑर्डर खुद तो कंप्लेंट तो से मा सिगी ट्रिगर ना को ये सी टिंग टिंग कापिम ले खुशी टिंग टिंग कापिस वन कौन से लगा टिक टिक काप ना से हम ना बा रे और सिगी ट्रीटमेंट ना कोई इंजेक्शन है काम नहीं दो इंजेक्शन का सरुद का है तो अब मखन की लेना नाब हो अतुप कमन है कार्पल टनल सिंड्रोम से सिंगली नंब खुद से जिंग जिंग जिंग जिंग पंगदर सिदर खुद के कंदोने नुदाद तुम्बद सिदर में हो पेसेंट जिंग जिंग जिंग जिंग तौबे सिमागी 30 to 40 से मैम से मरक्त हौरे मोसे अरे 40 to 50 यौरगानदी खोंग नाब खौरी नाब मैम तो डिग्री हेंजलक्तनी लेदी लोई लेदी को डिग्री हेंजले खू नाब डिग्री हेंजलानी सोल्डर की हौरानी पम्बोम मत की सोल्डर जोन जैसे हौरानी खोंग हौरानी खोंद खुजें खुजें सै जगह से खुनिंग खुनिंग की मखा से अयुक् तुम हकोपद खोंग थाब ngamdre खोंग थाब नारे अरे पोथार हेक थाब नादने चब ngamoidne खोंपाक से मखा से नादने खोंग थाब ngamdana अब मखन मखन तवे ट्रीटमेंट मखोई मैंने फिजियोथेरापी का अत हिद खरग चौरग इंजेक्शन काप फतरगन काप अमन मैं तवे अगर 50 to 60 ओसियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस कोई सरु की जॉइंट तुम्हलप की पोसे हेंजलप खुदगी हेंजलपना खुद जौराने वादे ख्वांग नाब लेगरे सिगी सोल्डर की नाब लेगरे अरे ख्वांग खौरीग नाब से मा हेंजलाने वाई खरग सूम नारंब अयु नुदीन तुम हवप नारंब फरम अरे हेंजलाने डिग्री सूम हेंजलक्तनीको अरे 50 to 60 माई मेनोपोज लापगी तौरग से ओसोपोरोसिस हौराने वा ओसोपोरोसिस नत्रगना ओसोपिनियाइजे गई सरु सोंदर पैसे ओसोपिनियाइजना खर वालीब अरे पोरोसिस हेंजन भाई सरु याम सोनब होने सरु पाथब है तो सरु पाथब से पाथब हैबनीको मपांगन वातुनीको सरु तुम्बद नतेको सरु अनी तंगनरग तुम्बसिना आर्थराइटिस तो ओसियोआर्थराइटिस है सरुद मसंद मपांगन नुने सोंदगी मनुंग नुने सोंदब तुमजन नतब अदेजना ओसोपिनिया नतर ओसोपोरोसिस है डिग्री से हेंजन बजना ओसोपोरोसिस को 60 टू 70 हो रहे सिदैंग सही डिग्री मैम जिंगे लोने हेंजलतो निको सेरीज लेना मैम जलो लेरनी हेंजलानी को ओसोपोरोसिस हेंजलानी सिनाउ सिदादी कमाइन दरनी यंगलेन जितेक

0: 라네 양렌기 양렌 프랭가나 쾅디 마다 프랭가나네 나레시 용응 모드니 코마데 코다코다 할테니 아스 나라메 데누민 망아토니 합타 아마 포타라가 히퍼가 게놈자라 파그레레드네 아두 에피소드 아모맘네 마나 마나 나름이다 서로 어머 띠에니 서로 어머 띠고제 아두 마 카라게 된 파기바 라이벅 티라디 포토 투살루라가 동 투선마담다 닝나 툰나 타르가 닝나 탁옹 예이라디 프랙처 더 우드나다나 패럴라이즈 더 우야웨 도마인 더 우섬 탱나레 버코 나 시기 세 히세다 야암 데나 까만노 바 레나 마나 까마인 더 게다 할로이 바 자기 누핑에 이세 시다 콩드기 나바오라가 콩 나마나 프랭 안 시다라네 바 예 시다바 나트라가 오이 시다바다 나드나 아니먹 시다바 나 시다바다 나드네 마세 까마인 더 게다 마사지 콜로 콜로 사투네 바 투올 카르살라니 미터 삼천이 정화 살라가 레디 아잉암드레 마망 제히데디 미터 정화 살는 몸에 타터 마망데디 미터 삼덴 감드레 하우지디 미터 양케 덴 감드레 마네서도 덕도이제 먹홍지 빵드라카니 잉드라카니 사레 지에 먹홍지 노알드네 바얌나 알마인터가 시나 콩 아니 먹다 아야마나 떡걸리 싱글 떡우지야위 아데드나 모이네 럼버 캐넬스노 시스나 거기 싱리기 서루문웅도 야오버 싱리기 싱리지엔 바 거기 서루기 먹훈놈레바 먹훈제 좀 구절럭바 sahi ko na kunzelak pa indle na ne ari ato ba mana sa gi soldier zone se sa si se de ma tong ma ori ba ma tong je sega ra ba ma tong sega ra pa ge si na si ge thang ngam de swain to lak tu ni ma ko je thang ngam de na yeng ma da ma tam ju chang e treatment je khara si da di jume ma tam ju lawe khar di wai ko adu ga adu treatment ro ga di pa di pha ba next ta mung lak tu 72 it yo re si da na mo ko ai da ne osteoporosis sa gi sa ru pa tha ra ko do ya pa tha ra ni sa ru adu yi पाव दन नते माई दी टेकला ने सरो सिंह जे टेक पाव रने माजे कैन सही सही आ मिंगे मखे तू बे लेव फॉल्स है फॉल्स है तो मै कनी मिट रक्तबा ना कर पंग मसल रिफ्लेक्सेस में हम जो मु तपे अदुना कितंग तू खुन गाओ ने खुद दन टेकला यांग लेन टेकला कनी अदुना अदु प जगह से जो मतंग मतंग कुछ ह्यूमरस टेक पा फीमर सी की थाई बोन टेक पा खुजिंग द टेक पा yam kaman le rane atuna ta padana osteoarthritis nga sai myam do hip joint gi phairu gi osteoarthritis la ni ni joint de dum le jare khu gi kwa are yum khwang gi tek pa number ken asi myam se degree sum hinsla koi wani now sahi marfu he laga di asi na mu nga sai myam jo what so re mo ji di sam san na koi gi no ma ma kam na te ma ji sam san na de aina kan no ma nga sai phi chu bu da phi yum so re yang yang na so bu do ai sing jo ba gi phi du ma na tang long thang lu da na तुम देखे देने तक थंगर पे तो ए पो आय करे तो टी एक्सरे लोकन दे टी एक लेम देने अमाइन तो दना कोई खुजी एंग द टेक पा देगी से की फैरो की से जे टेक पा तू बस या कन तू बना तब स स्लीप अमा ए मोरा द फम दे तक लंग तू अद बो तो तुम टेक लकर अदना सही या न फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर से एक्सट्रीम हाइट आ सी द आई ओरे
1: हो डॉक्टर नो जिक एम सुगाइना च ही गी तंग कक तंग खाइ दो गा को गी दुबी सिंग छ द थेंगना बा को गी सरु की अना बसे करी करी ओरे पयाई करी करी थेंगना बगे है बदु गी मतांग द याम न मरी चुम न थंबी रे है बता रे डॉक्टर अदुका खंगजन इंग्लिश न डॉक्टर न साई पन भी की बदा को गी खुद की जिंग जिंग ल रप गुंबा द गी खोंग था ब चत पद खोंग था ब ग मक्त ब गुम से मसी करी द गी नो मसे सु की तंग थंबी रा म
0: सगी खुद त जिंग जिंग ल ब सिदेजा सिदेगी kujing de gitor ga to se masis na koina carpal tunnel syndrome hai sina kamai to we da sei san banung sei san nerve sali nerve sida tendon ma ang so na thori yem na ki ra so na swain tor sat pne un la laksha laga are da swain laksha la sat pe sei da masai gi nerve se electric current chen ba po ne ba electric current chen ba po se mai ma thau se electric current chen nga mok ta bai da electric current chen nga mok ta se na ma je jing jing jing jing jing tor ga yam no patient da yam no discomfort yam no ngai da ba po oi ba mainly is ma number 1 jing jing do se are ye atopa ma na sa gi sidagi cervical spondylosis dei haura ga khau sidagi thole ib singli me anje brain dei tholok pa je spinal cord la spinal cord gi na bru thola ga sigi thole ba na me anje khud ma ton dan lag tu ne ba degenerative changes sa gi al ora pa gi sei yamak pa hai ta na dix na kang de bone gi spur ne le bone ma sim se le na mo ne namak pa ta re अरे नमक पदी मथौ से तमंग मक तना जिंग जिंग पर इंजान तबा न तगा मते एक तबा अदन तबा खै गे सिग्निज सब पाइ दरे प्रेशर तोरगा न फजना मथौ तोम मन दबा अदि दगी वेर खों गि सिनंग सगी प्लांटर फेसाइटिस अना कुना एम न प्लांटर फेसाइटिस ना आयुक्त मजे तुम हाक पथार रोगा मरोइना आयुक्त तोगले कुनिंग तक थाव गान सिदा ना दुनिया मजे ना रे ना रे कुनिंग सगी कुनिंग गि सिमा पास सब सने हेक्टर म पास ना दुनि when yin kan da ma ze tender we am na ba za ma le ni as ting long chong de ne ar kari dei to ye ka na sai de planter ma de manu dei ma tu am na pe saru ze da na pa se ma ze sum overuse ne sum han zan

0: ताबिरिबासी आगश फनिंग फलके एफएम संगाई चैनल दिगने हाउसिंग मखा ताबे थोरम की दमक वाईकोम पुर्निमा दा कुछ नजरी
1: थागचरी चंदना अदोम न थोरम ताबिरिबासी आगश फनिंग फलके संगाई चैनल दिगने ताबिरिब पुम नमक पो तराम न उक्षरी खुरुम जरी थोरम मखा चतजरक पो ओइना हाउसिंग लांथोक जरी गाई खोता किसी

0: mi mithoi momal lipangam dena tra ayeng di manipur lo jelo ya thungna leiba human rights activist kayama mera pa bi sangsang kayama na lambi lamja aw lao dra sal kedori mandi thonga re pul lao kedori sikha bi sik ki thawai sing du ki dama kheti bon tal kedori lao bi miam lao bi kholao do sarka khatar banati na khoi ta mathau dai
1: okay thongdo asle la le bi ekhoi ne han lor si adbu mirak narak yengdra numai malu masing tamna maning makha tamale ba security force ki maige deshu aran ba kya le se adum chu yabam thok tabra
0: lali khannari ba maike ani mak lali aduga wapha masi hongdok tuna nangi thamai ban ningen haliba aim se lali adubu ai ninga sina ngor wapha amani dang haikhi ba sidi chi khaba thawai singa dugi ken dabai kholao ni khanduna nang aibu lana khangana
1: ning tamge hak matpi khraba iramdam irei ba sibo ning tam phangna ba honai ba ekhun ngasi hauri bi ho sibo di jumme hai lawi bra
0: landi landam male haina khalli adubu singneri badi dali ba pandam pandung pham do yob nga moidra hai bisi
1: prithvi ki itihas ta loila mapu matna ningtam ihob to mighty pi bangam kidre
0: madugi pramandi
1: masigi matik chaba pramandi french revolution amadi russian revolution mai ek sanga takla bani
0: adu kari gumba usi ga iroi ga waina matam da iroi gi mission da samu nam sang hadi kam do ba
1: kari
0: masi ai khoi le box le lalu mayam sikhina international ge thak da pukhana ba hona matam da union ona mana da hatri ba jo jo country mayam sikhina na khoi de matin party ba se na khoi policy program da achoi ba kayamum le bade gi hai ba si nang na sa ja pham thoi
1: ekhoi yam kan hona jari ngasi mangam dra su haiyeng de khoi shoi de ngam gane
0: kari gi no na khoi na haiyeng haiyeng edra phai ni tra le si ba nai haiyeng haiyeng na phai ni tra le ri matam da tripura ra tripuri ma si handra pu gum manipur ju manipuri ma si handare ai khoi pu na manga ai khoi gi ye lo mi sing am da ai khoi ga identity kan ba dar ka le mi har pa dai na bi oi gnu mi kan ba na khoi ga so pan da mo yo
1: ngasi shong ge thengje du na मम्मन यामल बस सजेशन क्या पीपी भी दमक ऐंग थक चले आई पार्टी के हर सिंगर हाई जगह दुगा हाई भी वफ़ुम दमक थब कोई न उन तो न भयंकर न होना जगह नशी के लिए वारो भी बैठे आई कितना हंजर मगे
0: अरे वफ़ुम मम्मा ना
1: करें मैं वफ़ुम
0: मतलब मम्मा दानो कोई की याहूल इहो दुगी दमक बतवाई कटोक तू ना याम करने से ने सोंग जरम बा पार्टी के सब ठाउ डांग लोरम बा मेरा बाबू पार्टी के एगेंस्ट थब तो बनी पार्टी के शेल लाने शी नहीं है तूना बद्राम पिशिन दुना पार्टी तांथोक पीखिरि बे मरम करिगिनो
1: एको गी आंबो मैरा बि मतांग द करि अखंग बले बिबो
0: पार्टी गी इंटरेस्ट ता हे पोमिने बा मया बे मकु मखुत मन काफ तो हालु हाइबि याते हाइबि गि दमक पार्टी द बद्राम पिशिन तांथोक पीखिरे बा मैरा बा हाइमि सक्तो अदै कना सुलते नसि नंग गि नमांग लेलि बा आइ शामंग ने
1: मतम ममदा ऐ खोगी निंगतम इहो सिदमकता आइ खुद पाइदना तमजिंग लमता पिगीबा ऐ खोगी यामबा मैराबा
2: हौजिकता बिरे सुमांग लीला इगिना सोम अनि सुबसरु लीला सानबिखिबा संगाई आर्टिस्ट एसोसिएशन गी लीला कांगबु अदोम न थौरम ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फाल गी संगाई चनेल दगिनी

0: थोड़म संदूक से बलोई जरी तभी बस ही आकाश बानी फाल देगी नहीं सथा जरी बा थोड़म पड़ेंगे निमिदांग पुंग नी पाल लांथोक जगनी रेडियो लीला ओजा मोनो लीला सिगी अरोई बशरु लीला छनवी गदबना रशिया फोकस की लीला कांगबो।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैलरी?
3: हाँ।
2: नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कई दिलो यूसी दया नाना
7: दासिंग कई का एचआईवी टेस्ट तो रुके तो हुआ
6: कई यूनो नवानी दिया एचआईवी टेस्ट तो दो इधर
7: इबानी लो हों मगी अहन मसेन है ना करे अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तो उसे ना है ना रंबा
6: नवानी दिया अंकुर रहता है ना खंगना रख पा अदुगा कई यूनो एचआईवी टेस्ट तो दो इधर नवानी की से अमना अमबो याम थाजन अदबे वानी ने
7: अदे न तेदा HIV test tok tok tu na HIV lei na traga lei te na khang to phai ba sa yam na phaba thabak ni
8: masi hakjang phana lei ba amadi akhoi ani gi tung gi pinsi gi damak ni aduna HIV test tok du na isagi HIV status khang to phai ba sa routine health check up gi saru amo hela da ba ne
6: aisu HIV test tok tok ni nge du da kai hum positive oi ra ga di mayam na khangoi dro
7: HIV test tok phai ba sa confidential ni aduga nangi test ki result da kana mata da haido oi adu nang na aids ki maram da he na khangninga badi hiv helpline number 1097 da call to salo adagi aku pamaro loi na khangani chalake ko
9: call coin gr longbi gi ai phana ba gsp crop science limited na longmi gi phok thok bu chada tara da gi tara manga phaw be henga than bangam laba achau ba khudol am tambira re call coin gr call coin gr de yauri ba seaweed extract humic acid am di amino acid na hopam bi bu masani tin na pokhali kaitin am di kyolin asina homaru nin tin na chang bangam ali hopam chelande lo sangam am da supna gi kilo hum khat chai thok piu call coin gr phangfam ar agro kaisampat am di adong nak na ba
10: Exotica, Exotica. Lomi gi anoba yai fa pauzel. Exotica hairiba tilhak hidak asina. Mana kakpi, mana chikpi, mana konchinbi, mara pumbi, using zamanbi, marik utong, nungi, waikupmanbi, amadi, atai atai. Lomi nami pai nariba tilna kayadagi natopangami. Hairiba tilhak hidak asina. Lopombu kuina tilsing dagi natopa da natana. Paubusu mapangan. Sawong su fazahali, sizinabiyu, exotica, adomgi manak nakpa, tilhat hidak yonfam singda fangli. Exotica, exotica, exotica.
11: Office of the Accountant General Audit Manipur ki contractual basis ta young professional ki firm amalaw na bagidamag candidate sing dagi darkhas gauri mahigi thak BTech BE Computer Science IT MCA natraga Data Science Statistics natraga Finance ta Master's degree oigadabani candidate sing na August ki tang tara tre tagi tarama pan phawda form thajin birak payagani akupamarol AG Audit Manipur ki official website tagi khangbi bayagani
12: Vikrant Goal. Sangam da kilo ani harna traga lengoi torlaga season abana. Low da tarakadaba, mayon sikpi, mana konsinbi, utong tin amadi, wahik da gingakto pangami. Fung fung, agro values kai sampat near Sisipur bus parking amadi, manak nagpa tilar hidak yon fam sing.
13: Admission open. BA and MA tamthanibas ngi nuai raba pauzel. Tamba hek loiba ka thapak phangbagi khutong sabal leiraba. India gi state khudimakta amadi international company haibadi Japan, USA, Dubai nasing ba country singda. Placement phanghan khaba scholarship khudong sabal leiraba course sing tamnana bagi damak. Manipur University gi Department of Vocation Studies and Skill Development lak piraga aku pa paulo biu. Course sing adudi BBhog, MBhog, Tourism and Hospitality Management, BBhog, Retail Management and Foreign Trade, BBhog, Food Processing and Quality Management, MBhog, Entrepreneurship and Foreign Trade. Haiba course nga sagi online application thaba hujare. Adongi angang sing tamah number gi damak Manipur University gi website natraga department da atuba matam da lakpi raka tana biyu akak nabachit masing ni.
0: Chakha jari ba thoram padengi numidang pung tara degi na tara makhai phau bada adom na postcard ki khutang na khan ki ba tabiring ba Manipuri film misai sing kangla channel da taba phangbi gani. Thoram chandok tu na tahan jari ba si आकाशवाणी इम्फाल देगी नहीं। Haujik Numidangi pung tariat makai tarpa galoinana Manipurita pau tabirasi.

पहली बार तो नहीं बहुत बार मिलते हैं लेकिन प्यार जो है ना वो हमेशा होता है। वो कहते हैं ना कि प्यार को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, बस कभी किसी को पहली नजर में देखकर दिल ठहर जाता है और कभी धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं इस गीत की तरह। जी हाँ, अभी जो आपने गीत सुना है एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने और फिल्म साजन। तभी तो कहते हैं कि जो पहली मुलाकात होती है वो कुछ अलग होती है, एक छोटी सी नजर, एक हल्की सी मुस्कान और दिल को पता ही नहीं लगता कि सामने वाला जो है वो अपना सा है या फिर पराया सा। लेकिन जनाब प्यार अगर पहली नज़र में हो जाए तो फिर दिल की हालत का क्या कहना है ना, क्योंकि जब प्यार दिल में दस्तक देता है तो सबसे पहले असर होता है दिल की धड़कनों पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुमार सानू की आवाज में आपने सुना ये गीत फिल्म चमत्कार से। प्यार की खूबसूरती शायद यही है कि इसमें बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, एक नजर ही काफी होती है, एक मुस्कान ही काफी होती है ना। और कभी कभी तो खामोशी भी पूरी कहानी कह जाती है। और जब प्यार सच्चा हो तो दिल बस इतना चाहता है कि ये रिश्ता यूं ही बना रहे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। तो बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब बारी आती है हमारे अगले गीत की।

1994 में आई फिल्म मोहरा से आपने ये गीत सुना, साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया विजू शाह ने और इस गीत को लिखा इंदिवर ने।

तो दोस्तों खास श्रृंगार में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में समय रहेगा समाचार का। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बी एल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव

बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार निखिल, नमस्कार अनुभव, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर.
0: थैंक यू निखिल. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes, and global crude oil prices rise.
1: शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 300 अंक की सुस्ती, जबकि निफ्टी 24,300 अंक के नीचे बंद हुआ. सेबी के प्रमुख ने कहा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अभी जारी रहेगा. सेबी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी लाएगा. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.

0: advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil.
1: और श्रोताओं आपको बता दें, घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.36% यानी 281 अंक गिरकर 77,700

0: 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 Index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 Index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, HCL टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे. इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE, 15 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस. अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिक्लाइंड 1.7%, फोकस्ड IT ड्रॉप्ड 1.6% एंड टेलीकम्युनिकेशन फेल बाय 1.2%. इन कॉन्ट्रास्ट, रियलिटी इंक्रीज्ड 1.4%, metal gained 1%, and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,353 companies declined, shares of 2,087 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ. और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित. अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार जी.
1: नमस्कार
2: पोली सर. नमस्कार सर.
3: नमस्कार अमित
2: सर. कटेडे को नहीं आए थे आप?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत करिए, बताइए.
2: सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करेंगे सर वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें बाइंग कर सकते हैं? दूसरी चीज सर, जो अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 बजे से इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है? हेलो सर.
3: हाँ जी, हाँ जी.
2: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे, और सडनली वो ओपन हो जाता है फिर से 435 पे, तो उसके बाद 340 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है. तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही वो 100 रुपए पे ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा और डर ज्यादा लगा रहता है. धन्यवाद सर.
3: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज हैं. रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुई तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो अब जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होती है तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर कूल डाउन होने होने. सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है अमित कि उस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स फिर स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है. और ये तो बहुत आसान है पता लगाना. आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर हैं, FMCG है, डिफेंस है, IT है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूं, आप सेक्टर्स की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर, जो होता है हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
4: जी.
3: तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है. दूसरा आपने पूछा, अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पे लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है. ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैस, तो इसमें अब आखिरी वक्त पर ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है. जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है, ठीक यही परेशानी ज्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है. इसको लेके काफी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है.

0: एकदम से ऊपर चली जाती है, निफ्टी एकदम नीचे चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा, और थोड़ा सा हालांकि मेरे अंदाज से ज्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
1: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, द कंसर्न्स दैट अमित हैज रेज्ड एंड व्हिच अर्शद जी जस्ट एड्रेस्ड, द सेबी चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन तुहिन कामता पांडे एड्रेस्ड दोस concerns today, and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, the SEBI chairman is aware of the concerns, and of course, the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
0: Absolutely. I think, as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system, you know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, update the systems which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
2: Jitendra hai, Jaipur se unse baat karte hain. Jitendra, aapka prashn puchhiye hai.
3: हाँ सर, जैसे आईपीओ निकलता है तो मैं उसको देखा, तो जैसे एक ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, फेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है, तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फ्रेश इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने किसको क्या मार्क करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो हम लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
0: आपका जितेंद्र, दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने आईपीओ, ओएफएस और नेट ऑफर टू पब्लिक आया है। आईपीओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका, तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफे कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है, उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रोमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
2: रिस्क मैनेजमेंट की शायद बात कर रहे थे,
0: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आ रहा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, इट्स कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। दिनेश हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दिनेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपसे
4: रिक्वेस्ट।
1: जी हाँ जी, बताएं। जी
4: हाँ जी, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जो हम बीजेपी वोटर आ रहा है
0: दिनेश जी, ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है।
1: वी विल आस्क यू दिनेश जी, आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। रत्नाकर हैज जॉइंड अस।
5: हेलो
2: जी रत्नाकर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में एक प्री ओपनिंग सेशन होता है
0: जी,
5: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन, और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्लिप डाल सकते हैं क्या, और उसका असर जब ही मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को, तो उसमें क्या होता है, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है। थैंक यू।
0: चलिए रत्नाकर जी, दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है, तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है, इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपन

0: के लिए खुल जाती है। इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है, पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से। तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं, आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल, उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है। आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा, कभी आप उसको ट्राई करेगा, आपने अगर अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय। पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं। दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, हालांकि आप ये पहले कई दफे पूछ चुके हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा। FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो EVs पे फोकस कर रहे हैं मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नजर बना के देखते हैं। IT वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है, ऑटोमोबाइल नॉन EV सेक्शन में डाइसी है, ऑयल कंपनीज भी डाइसी है, स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा अब तेजी पकड़ता यहां से नजर आ रहा है, खासकर कॉपर हो गया
1: जी।
0: और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है जी।
1: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर है। दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से
0: जी। बताइए,
2: ये जो डॉलर रुपी का रेट है, रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए
0: जी।
2: लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स, एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है। तो क्या हम लोग को रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए धीरे धीरे करके, एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है, जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड, लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर। तो व्हाट इज द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विज स्ट्रेंथन कर सके।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डीवैल्यू कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए, ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है। और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज्यादा रहना है, आज भी $90 के आसपास है, हमें ज्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमजोर होता है। अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी, बल्कि RBI ने अभी FCNR बी डिपॉजिट्स निकाले हैं, उसमें $52.3 बिलियन आया है। अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं, पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी। तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है, जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है ऐसे जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो रूपी पे प्रेशर पड़ता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ RBI अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है, और RBI डॉलर रूपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में। तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा, और पूरी RBI इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए, पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है।
1: और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है। दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने या पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया, और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
0: देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूँ अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं, कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती हैं मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और ऐसा उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी GDP की अच्छी रफ्तार और अभी IIP के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे, मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद AI की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारत के जो आंतरिक फैक्टर

0: मार्केट्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसका मार्केट जिसको क्यों लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
1: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, यू वर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ बाय सम you know some estimates the Q1 results have come out better than expected and in spite of that we see the markets are not reacting to those better than expected results.
0: I think another market the international factors are overriding,
1: right,
0: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon, they say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time,
1: right.
0: Yeah,
1: let's move forward.
2: आगे बढ़ते हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का यह बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बनाकर के चलने की।
0: जी हाँ, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब एनपीएस का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहां जहां रिकवरी है वहां रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीन अप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन बहुत अच्छे आई है, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास बन रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
1: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
2: जी हाँ, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
3: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला है कि ये यूनिट होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा फोन मेरा भी है कोहली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अब जो यूक्रेन, रशिया, ईरान और ये बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग में डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में
0: प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज बहुत अच्छा लगता है आवाज अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं प्रीतम जी बोलूंगा कि यूलिप बहुत बहुत अच्छी स्कीम मैं नहीं मानता हूँ। बैंक वगैरह जो उसको बेचते हैं वो ठीक है, उनका काम है बेचना, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मिक्स करने से क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते और बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले जाते। तो मेरा मानना है कि जिसको इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस आप लीजिए इंश्योरेंस के लिए, रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट आप करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत ज्यादा यूलिप का निजी तौर पर बहुत फैन नहीं हूं, और सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है नहीं ले पाती, ये तो प्रश्न चिन्ह है। पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा, तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी। तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है, ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब उगरी। पहले लड़ाइयां होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है।
1: और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए, बाद में रिकंस्ट्रक्शन। और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme, or ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I'm still continuing job at the age of 59. Can you help me? Is it the right thing, or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
0: Well, Mukesh, I would suggest in such a case, you should contact the Provident Fund authorities, because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest, because you've retired from there. So obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58, if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest, and it's all online these days. It's right. Going to be quite easy, Mukesh. Right.
1: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in. And a look at the gold and silver prices, Nikhil.
2: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
0: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहां तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है, जैसे बोलते हैं अभी कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। $90 है और खतरनाक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अगर ये $100 और उसके बाद जाता है हमारा इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती साथी का पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है पर और ज्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती है और चाइना है कोरिया है इनके लिए दिक्कत आ सकती है।
2: शरद जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुक्रिया थैंक यू।
1: एंड बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 24,300

0: SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

अभिनेत्री फिल्म से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में।

छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नबीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

गीत मोहब्बत की पहली दस्तक है, कुछ बिछड़ने की कसक, कुछ गीत बीते दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने सजा देते हैं, तो कुछ यूं लगते हैं जैसे कोई अपना कुछ दूरी से ही सही आवाज दे रहा है।

नामे का फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तो आइए इस सुहानी रात में बीते जमाने के उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ पल बिताएं जिन्हें सुनकर वक्त थम सा जाता है और दिल कह उठता है। कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वो बस हमारी यादों में और गहरे उतर जाते हैं।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मधुर सुरों से सजी ये गीत जब कानों में रस खोलते हैं तो मन की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हर धुन अपने साथ यादों की कोई मीठी तस्वीर ले आती है और दिल को सुकून से भर देती है। ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ सजती है संगीत की ये सुहानी महफिल।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। जब दिल में कोई मीठी सी हलचल हो, यादों में कोई अपना उतर आए और हर धड़कन कोई अनकही बात कहने लगे, तो दिल शायर हो ही जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 54 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

कॉलेज गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार जब दिल से निकलता है तो उसे कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी कोई मीठा सा गीत ही दिल की पूरी कहानी कह जाता है।

लौटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने हुस्न की तारीफ हो और अंदाज में थोड़ी सी शरारत ना हो तो बात अधूरी सी लगती है कभी दो दिलों के बीच प्यार भरी नोकझोंक तो कभी एक दूसरे को पसंद करने का खूबसूरत इकरार यही तो मोहब्बत को और भी दिलकश बना देता है

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जब किसी की मौजूदगी की आदत दिल को लग जाए तो उसकी गैर मौजूदगी हर पल महसूस होती है। घड़ी की सुइयां चलती तो हैं मगर वक्त जैसे ठहर सा जाता है। हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द घूमता है और दिल बार बार बस यही सवाल करता है, आखिर ये कैसा एहसास है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने धन के प्रवाह की मौजूदा और बदलती स्थितियों की कल समीक्षा के बीच आज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR नीलामी की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी आज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और धनराशि 19 अगस्त को वापस होगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को आयोजित 2 VRR नीलामियों के बाद की गई है। पहली नीलामी में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 96,914 करोड़ रुपए 5.24% की कट ऑफ दर पर स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम दिल को फिर होश कहाँ राह का पता कहाँ तेरी चाहत ने कुछ यूं थाम लिया दिल को कि जहाँ भी गए बस तेरा ही ख्याल साथ चला

खामोश फिजा में जैसे वो गुजरा हुआ पल फिर से मुस्कुरा उठता है। वक्त आगे बढ़ गया, मौसम बदल गए, मगर उस मुलाकात की याद आज भी दिल में उसी तरह महकती है।

ये रात फिर ना आएगी। आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। आज भी इन हवाओं में उस मुलाकात की खुशबू बसी है और इस

जाइए आप कहां जाएंगे ये नजर लौट कर फिर आएगी आपकी यादों की महक हर पल दिल को छू जाएगी दूर जाने से भला कहां कम होता है किसी का इंतजार आप जहां भी जाएंगे ये दिल आपको पुकारता रह जाएगा मेरे सनम फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नय्यर ने

लेवन टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:34 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कभी कभी किसी से बार बार मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं रहता, हर मुलाकात दिल में एक नई हलचल लगा जाती है। न जाने कब अनजाने में किसी की आदत हो जाती है और कब वही आदत मोहब्बत की शक्ल ले लेती है।

शम्मा की लौ भी बेकरार है उसे अपने पास बुलाने को और परवाना भी चला है उसी आग में खुद को मिटाने को। इश्क की ये कैसी कशिश है, कैसी है कहानी दिल लगाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफी की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से आपने ये गीत सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जरा दिल को संभलने दीजिए, फिर चले जाइए। आपसे मिलकर यूं लगा जैसे कोई ख्वाब उतर आया हो। इन खूबसूरत पलों को जरा आंखों में ठहर जाने दीजिए। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको, दिल की बात पूरी हो जाए फिर चले जाइए।

दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन

0: योजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2,50,000 लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन SPV की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। कल नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। युवा शिखर सम्मेलन और युवा परिषद की बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदारी देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISR-backed terror group Shahzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plan to subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence.

वक्त हुआ है 2:10, वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। जिंदगी चाहे कितने ही मोड़ ले, वक्त चाहे हमें कितने भी दूर कर दे एक दूसरे से, मगर दिल में बसे इन रिश्तों की मिठास और साथ बिताए वो अनमोल पल हम कभी नहीं भूलेंगे।

बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कभी कभी मोहब्बत का सबसे हसीन रंग वही होता है जो पास होकर नहीं दूर रहकर महसूस होता है

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 19 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

रजिया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने सूनी सूनी इन आंखों में फिर से कोई हसीन ख्वाब सजाए दिल की जमी मुद्दत से प्यासी है कोई घटा बनकर आए और मोहब्बत की बारिश बरसाए

फिल्म अपनापन का आपने ये गीत सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में. आनंद पक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. कोई पल बनकर दिल में ठहर जाता है, कोई रिश्ता बनकर उम्र भर साथ चलता है. रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, मगर बीते हुए लम्हों की खुशबू कभी कम नहीं होती. शायद जिंदगी का यही दस्तूर है. हम चले जाते हैं मगर हमारी यादें किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं.

हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले कितनी गहरी बात है जिंदगी आगे बढ़ती रही मौसम बदलते रहे मगर दिल में बसी उस मोहब्बत की याद आज भी वैसी ही है कुछ प्यार भुलाए नहीं जाते बस उम्र भर चुपचाप दिल में बसे रहते हैं सौतन की बेटी फिल्म का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। तेज बहाव से रास्ता खराब होने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पैदल पुल बनाया। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मुकाबले में शी यूकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इससे पहले पुरुष युगल की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी दूसरे राउंड में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी गहरी होती जाती है कुछ यादें उतनी ही करीब आती जाती हैं। कभी-कभी बरसों बाद भी किसी की एक मुस्कान दिल में वैसे ही ताजा रहती है जैसे उससे अभी-अभी मुलाकात हुई हो।

रिश्ते सिर्फ कस्में और वादों से नहीं बल्कि एक दूसरे की खामोशी समझने से खूबसूरत बनते हैं सच्चा प्यार वो है जिसमें वक्त बदल जाए मगर दिल का भरोसा ना बदले

कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी यादों का कोई पता नहीं होता, मगर रात की तन्हाइयों में उनका एहसास अक्सर सबसे ज्यादा महसूस होता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल की हर बात जुबा तक आ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं, कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखों की एक झलक और खामोशी का एक पल ही बहुत कुछ कह जाता है।

रात के इस सन्नाटे में अगर कोई चेहरा बार बार याद आ रहा है तो शायद वो सिर्फ याद नहीं, दिल का वो खूबसूरत कोना है जहाँ किसी अपने की मौजूदगी आज भी कायम है।

मोहब्बत में दीवानगी का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी है जिसे दिल सच्चाई से चाहे उसकी मुस्कान दूर रहकर भी

0: दिल को सुकून दे सकती है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस प्यारे से गीत के साथ।
1: बात बहरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधि मंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर व उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर एक चीन के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मैच में शियू की को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and IED petrol bombs, attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students were announced that they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with Secretary Department of Higher Education, DG of National Testing Agency, and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म मेरा नाम जोकर के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है को अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म उपकार से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी गीतकार गुलशन बावरा

अभी आपने गीत सुना फिल्म शेषनाग से अनुराधा पोडवाल सुरेश वाडकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आगे बढ़ते हैं सुनते हैं अगला गीत फिल्म तोहफा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में साथ में बेबी कविता गीतकार इंदिवर संगीतकार बप्पी लहरी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा और इसी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

अभी आपने गीत सुना फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर उषा खन्ना की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार अनजान। आगे बढ़ते हैं सुनते अगला गीत फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

और इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और छोड़ के जा रही इस गीत के साथ, गीत है फिल्म सत्या से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार विशाल, गीतकार गुलजार। जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड सरकार ने 2024 की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीटीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का यह निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्ययोजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातोत्तर तथा उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े प्रत्येक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना का चरण कल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए, 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के युवा नेताओं, नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। इसमें अनुसंधान और विकास विस्तार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस भजन के साथ जिसे अपनी आवाज से सजाया है रविंद्र जैन ने।

सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो जैसे प्रकृति कहती है मन पर बीती बातों का बोझ मत रखो आज को मुस्कुरा कर जियो मन को गुनगुनाने दीजिए क्योंकि खुश रहने के लिए हर बार बड़ी वजह नहीं एक छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है